0: ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଅଚିରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ହରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुटीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन

0: के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। वंदनार प्रथम कंठ शिल्पी ममता साहू, शिल्पी कंठरे धनेश्वर राउत रचना।

0: ଫସଲରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣନ୍ତୁ।
1: ଇଫକୋ ନେନୋ ସାରର ଚମତ୍କାରିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ।
2: ଆଚ୍ଛା ଦାସବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା 1970ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ? ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି?
3: ଆରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ।
4: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ସୁପର ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ, 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ଼ ମୂଳ ଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है, और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया, तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं, उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
6: GST काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस, ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। HS कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଏବଂ ପାର୍ଟ ସପ୍ଲାୟରଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଯିବ ତଥା ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସହଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖୁସିର କଥା ଏହିକି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର ଉପରେ 5% ରିହାତି GST ଦରର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳ 8:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मामकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व

0: स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल हैं। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
7: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक चार श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर 97,700 डॉलर

0: से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमरीकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की यह खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताया।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे?

0: सन्ने भाई, सन्ने भाई, कबाड़ खोल सन्ने भाई।
1: के पुनी किलो?
0: ना मु मिन्ना, कौन करो छु, शीघ्र खोल।
1: अरे खोला अच्छी टिके पेली दे।
0: कौन कर छु सन्ने भाई?
1: खाइबा को पखाळ जोड़े बाढ़ी छी, खाइबो की?
0: नहीं बाडा कुछ, तू शीघ्र आ, मु जाऊ छी।
1: बाडा कुछ काहे की?
0: तू जानी नु घर को कुणी आछंती परे, नानी बाघर पई दिन ठीक करिया को, सेई डाक्टर बाबू म जे जे बार गोड़ भलो करथिले तांकरी पुआ साथिरे, से भी जने डाक्टर म।
1: कौन कहू छु तू? पुनीर बाघर दिन ठीक हबो।
0: हाउ मु चली, तू शीघ्र आ।
1: तो मनरे कौन एया थिला पुनी, एया थिला तबे तू मूलर न कहलु कहीं मो सहित बाघ बजारी खेल खेलुल छुआटी दिन बाओ माँ दी हर तो सिनेह बची पिछला दिन गोटी गोटी कथा मोर मन अच्छी से बोधे मु बार वर्ष रही
2: खाइबा को देलु, मु स्कूल को जीबी।
3: कौन अच्छी की रे बुआ, घरे तो जहा थिला सबु सरिलानी, गलु देखिबो हांडी रे बासी पखाळ थिबो, बडे बाडी किरे खाइ दबो, मु पुरा गोबर हातो होई छिरे धन।
2: नाही नाही मु से पखाळ पखाळ खाइबिनी, काई की तू आज भात रांदिनु की?
3: नाही रे बा, जहा छि खाइ दे किरे जा, तू स्कूल रु आसिला बेळ को मु भात रांदि देथिले।
2: नाही मु पखाळ खाइबिनी, मो गामुछा कानी रे बडे मुडी बांधि दे, तो ताकु खाई स्कूल रे पानी पी देबी।
4: सोनिया, ए सोनिया, अरे घरे डाउ करे किरे सोनिया, खाता कलम धरी कुआडे बाहरलु नी की?
2: स्कूल को जीबी।
3: किए किरे सोनिया?
2: ए बेनुआ दादी म।
3: हां हो रखे था, मु हातटा धोई के जाऊ छी।
0: कोन कहिबु की सैया?
4: कथा कोन की सैयानी, आमे त हले गौड़ घर पोंडा मुईसी चरीबा आमो काम, खीर की दही टिके बिकिले आमो घर चलिबो। सोया गला दिन टू दी दीटा गोठ मु एका चल पारुनी सयानी, पुणी एबे फसल फंदी दिन कहा बिल रे पशी कण खाइले तो ना निशाब रे खड़ी छेड़ी जीव, तेणु कहूली कौन कि सोनियाटा टिके मो सांगे रे गले।
0: सोया सोनियाटा एड़े बकटे पिला ए काम को कौन से पारिब, बैशाख मास मुंड पटा खरा चतुर्मासिया झड़ी कलिजा थरा शीत काकर, नाई नाई सैया छुआटा मोर हारिजीव, हे नहला नाही गोठ छाड़ी दियो, तेणी की ता कपाल रे जहा थिबो।
4: हां की कथा कहउछ सैयानी, गोठ छाड़िले खाइबा कोन चलिबा किमिति, बिलबाड़ी तो आमर गोबे बेली नाही, एई गोठटी आमर बिल आ पोंडा मुइसी दीटा आमर फसल, तू देखिबुनि सैयानी पहिले पहिले टिके भिड़ पड़िबो, तापरे दिन कईटा पुओटा मोर केमिति कांधो को कांधो नगे ठिया हबो सेती केले देखिबु। हां
0: मु कौन करी भी किछि जानि पारुनि सैया, तू जहा भल भाबुछु कर, एटी सैया पुओटी मोर तत्ते लागिला।
4: तू चिंता करना सैयाणी, आलो मु अछि परा, ए दे रे सोनिया खाता कलम मा को दे आ ने धर ए पांच घंटा आस मु संगे आसे।

0: 咱们地上的这里放那个走吧，他们那孤独着那个不可能走，也得苦心干起去了。好事我虽然还得来听起好事玻璃不老妇女嘛，难苦哩，
1: 难哟，俺们要上个这里来了一路，上木这里，上木这里来
0: 了。啊，干了公主吧，你上年可干了别的玩具了，走不？
1: 几个他搞着苦哩。सोनिया टिया मोर को गुणे रे गुणा की पाठो बेसी पढ़ी नै सिना हेले काम धंदा को परा धर कहिले बांधी आइबो सोयाटा जिबार एसन को वर्ष पांचटा पुरु न पुरुनु देखनो गोठ तार केमिति हसी उठिलानी पुरी उठिलानी बड़ लख्यंतिया पिलाटी पुनी बात कहूची सोनिया बिना तो सिए जमा दंडे भी चली पारिबोनी
0: तबे बेनुआ मन को पाइची था हेले हेले से टोकीटा मन को पाइब ते पाठ पढ़ी जिते बड़े से गोबर मुंडिया सनियाटा को कौन पसंद कर
2: गोबर मुंडिया ना, ना, ना, ना, गोबर मुंडिया लुचि लुचि तुम कथा सब शुणी जेजी आते गोबर मुंडिया कहूना तक टेक दुआ कचिदेवी सतरे कौन तेज टेकी कची दौ मो बागल किलीपिटा किए कह बाबा।

0: कौन
1: सनी?
0: अलो ए कौन तो आखिर लुह? अरे छड़ छड़ छड़ छड़ मो गोड़ धुर चुका है कि छाड़
1: तो सब तो ना सत्ता ही चिरे सोनिया भाई हाँ वो डॉक्टरी पढ़िया भाई सिलेक्ट ही जी मैंने बहुत चाहिए जी
0: हाँ कौन कहो चु?
1: हाँ सोनिया ही
0: तू तू डॉक्टरी पढ़ी हो डॉक्टरानी हो हे भगवान की भाग्य आमरो अरे मो गोड़ धरुचु कौन तते मो कांदरे बसे गां सारा उलेवी ए दादी हे कुड़ी पाले गलो
1: सोनी छाड़ो मा
0: नहीं नहीं
1: अरे चुआंग पर कौन इमली मत ठीक धरुचु माँ सुती वो केमिति देखने कौन भाभी हो गई लो
0: हो जा छाड़ी देली कौ संगे आपको था आता नहीं
1: ए रागी गलु की
0: तू को आड़े बुझी बिलो हैं ए दिनों को मु केमिति चाही बसतिले पाठ छाड़बार एसन को दस वर्ष हबनी सेते थे सार मते गोटे रचना लेखिया देते तुम जीवन लक्ष्य मुखी थी मुझे डाक्तर हेबी हेले डाक्तर केमी हूँ मु कौन जानी सार मो लेखा को सब पिला पढ़िले समस्ते हसिले मत डाक्तर बाबू असुद्य डाक्तर बाबू असुद्य कही चिड़ेले पण कली बड़ हले निश्चय डाक्तर हेबी मो कपाल तो फटा हेले तोरी भितरे हाजी हाजी तोरी भितरे मो लक्ष्य पूरण हेचिलो तुमि
1: सेति पई तो खबर पाइबा मात्रे मो आकी चोळो चोळो हे गले सनिया भाई आउ इच्छा हले तो भात तुडी मुंडे रे बुडी बाकु तो भात दीटा को माकी लोरे दुई दबा को
0: हेलो हे अरे आज पूरी दिन तो कांदुचु
1: इलो दुखर नुहरे इलो सुखर बहु कितने बहु जी बहु
2: किरा सोनिया सोनिया अरे आ आसुनो आ भीतर को आसुनो बापा कौन पाई आमको एत बड़ पार्टी डाकुल किरा
0: बुझिलु खुड़ी तो झील को पचारे आज तार कौन है पुनीर पूरा चिट्ठी आसी से डाक्तरी पढ़ा को सिलिकट
2: यही कथा
0: तू तू सत कहु
1: पुनी कौन मु कौन पढ़ी
0: केमिति पढ़ी लो माँ कौन अच्छी अमर मु तो अचल अपारग हो गली एत डाक्तर बैद देखे कहीं कौरे तो गोड़ा भल हो तो लगुच आड़ी धरी चली पी पारे आंठू दीटा केमिति छिड़ी पड़ला पी लगुच
1: नाई बा तू से कहनी मु डाक्तरी पड़े तो गोड़ निश्चय भल कर तू पूरी काम धंधा करी परिबू
0: नाही रे मां हमरो इते बड़ो कई मो सुनाटा परा तू मन उना करनी काही डाक्तरी पाठो काही तो बा आकाश कया चिलिका माछो
2: से न्यू छुणा पाठरे पैसा नसरी तते हाथ को दिहात करी देले आमे टिके शांति रे निश्वास मारिबू तू तो आउ एका नुहो तो पछु को पुणी आउरी दीटा से मान को कथा बुझिबू ना तोरी पिछा खाली लागी रही थी तू निजे कहू
1: देख मा से मान कथा मु बुझिबी मा चारिटा वर्ष कोनोसी मते कष्ट मष्ट चली गेले तापर कोनोसी थिरे कोनोसी असुविधा हबनी मा
0: एते बड़ो साहस मु करी परुनी मोर मनोबल सब टूटी जाउची ए नियानोगा बातटा मते पूरा अकामी कर देला कोन मोर अछि जे सेथरे पुणी मुंड उपरे तीन तीन टा बोझ आज आखि बुझीदे कल की छुआ गुडा मोर अनाथ हो जीवे रे तेणु भावुची मु जीव थाउ थाउ
3: सेमिति कहुनी दादी सेमिति कहुनी मोर भी तम छड़ा दुनिया रा किए अच्छी कहले मो बा मा मते छाड़ी गला दिनु तुमरी स्नेह श्रद्धा मु बढ़ी मु जी थाउ थाउ तू कहीं डरुचु सब भल मंद को मु भी तो अच्छी
0: मत अधिका ऋणिया कर्णारे पुओ तो ऋण जीवन मु सुझी पारिनि दिने दिने तो हाथ कलम काठी छड़े।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

GST Council Commercial Business रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस, ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: आकाशवाणी कटक सुनंतु कार्यक्रम सूचना 11:10 अबुला गीत शुणे कतोटी आधुनिक गीत कंठशिल्पी शेखर चंद्र घोष और समिता करावड़ लोकसंगीत क्रम ओडिसी कीर्तन दिन 11:30 परेषण कर लक्ष्मीधर स्वाई और साथी मंजुला मध्यान श्रोता एसएमएस मध्यम हिंदी और ओडिया कथचित्र गीत

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री
1: मुए दी अछि
2: तुमको नुहे याकू मोबाइल चार्ज करिबर अथिला
1: निजरो अक्कल चार्ज कर
3: एमिति पब्लिक पोर्ट रे फोन चार्ज करिबो त पर्सनल डेटा हेबो पब्लिक
1: देखिलु
2: बापा मु पे करूछि नो सिग्नल
3: एबे कोन करिबो
2: फ्री वाईफाई अछि ना
1: बोका सुधुरी जा
3: पेमेंट्स पाई नो ओपन वाईफाई
2: माने फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहे
4: करो सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट
2: पापा देखो
5: हैप्पी बर्थडे भाई
2: देखा वाह मोर फेवरेट कलर
6: सब बेले शॉपिंग
2: आई नो मा खर्च करिवारो वयस एटा राइट
7: सेविंग करिवारो भी वयस एटा
8: आई नो बापा सेव कर उचित जगह रे निवेश कर मूलधन ऊपर सुध मिलिब जहा को पूर्णी थरे विनियोग करले सुध मिली चली थिबो आई नो ना आरबीआई कहे
4: कर सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट
9: शिल्पी कंठ से परवर्ती गीत गोपाल चंद्र पंडा रचनारू।

0: समृद्धि आणंतु।
1: इफ्को नैनो सारर चमत्कारिता रे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: अच्छा दास बाबू आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पजंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सही थी पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखी दिली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: लोक संगीत क्रमरे प्रचार करुछु ओडिसी कीर्तन परिवेषण करिछन्ती लक्ष्मीधर स्वयं एवं साथी माने।

ज्ञानी मंडली तृतीय पांडव अर्जुन लज्जित हो बसवा पर नकु एवं सहदेव समान प्रतिज्ञा सृष्टि नाई युधिष्ठिर सत्य न्याय द्वाही बुझाई देवा परे निज निज।

विदग्ध ज्ञानी मंडली भीम हारिगले संगे संगे आपण मान जांगलिक कहले बाबू आपण मरवाटा निश्चित जदि आपन को किए सा तुम भाई मान को डाक तेज आज्ञा घटना कौन

अर्जुन को कहिले कहले बाबू तुम पाई सर्त ये अशो पर बसी इनी पूरा भ्रमण करी इनी घड़ी करे जदी पहुंची जीव ताहले तुम भीम भाई बंचीबो जदी एथरु विलंब हुए ताहले तुमे मध्य जास देबो अशो पृष्ठ रे बसी अर्जुन आज्ञा समस्त तिनी पूरा को भ्रमण करबा को।

0: ओपा चाकरी मिली गोला।
1: अरे बा अभिनंदन। एबे बहुत गुड़ा शॉपिंग।
0: हाँ ओपा नुआ मोबाइल जीन्स जैकेट।
1: रही जा राजकुमार, सैलरी पूर्व बरु खर्च।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलु छी।
1: प्रथमे बजेट बने बासी तापरे खर्च कर।
0: किंतु ओपा
1: देख रोजगार रो गोटिए भाग संचय कर, किंतु पार्टी देवा को ही पड़ीबो।
0: हाँ ओपा पार्टी मोरो बजेट तोरो।
2: आरबीआई कहे
3: सठिक आर्थिक आचरण रखे आपन को सुरक्षा रो ध्यान।
4: तीनटा कॉलेज रे
3: व्यस्त हो ना।
4: फीस तो देखो।
5: हे कौन खबर
6: कौन हैला?
3: हां फीस रो टेंशन।
6: राहुल रो बैंक अकाउंट तो अच्छे
7: तो रास्ता क्लियर। बैंक रो आवश्यक अनुसार स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलिबो, जेउथिरे 4 लाख टंका पर्यंत नो कोलैटरल।
6: हां सीए कोठी
7: मीठा।
8: आरबीआई कहे
9: कर सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: एबे आसीबा परवर्ती एसएमएस को पठाइछंती महम्मदपुर बिलहाट कटकरु मिट्टू पात्र, दुर्योधन पात्र, बावरीबंध पात्र एवं सुदाम पात्र। आपण माने अनुरोध करछंती ओडिया कथा चित्र साखी गोपीनाथर ए गीतरे सुनिया पे सुनै दउछु।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली
1: सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री तुमको नुहे याकू मोबाइल चार्ज करिबार
2: थिला निजरा अक्कल चार्ज कर
3: एमिति पब्लिक पोर्ट रे फोन चार्ज करिबो तो पर्सनल डेटा हेबो पब्लिक
2: देखिलु
1: बापा मु पे करूची नो सिग्नल
3: एबे कोन करिबो
1: फ्री वाईफाई अछि ना
2: बोका सुधुरी जा
3: पेमेंट्स पई नो ओपन वाईफाई
1: माने फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई को है
2: करो सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट
1: पापा देखो
4: हैप्पी बर्थडे भाई
1: देखा वाह मोर फेवरेट कलर
5: सब बेले शॉपिंग
1: आई नो मा खर्च करिबारो वयस एटा राइट
6: सेविंग करिबारो भी वयस एटा
7: आई नो बापा सेव करो उचित जगह रे निवेश करो मूलधन ऊपर सुध मिलिब जहां को पूर्ण थरे विनियोग करले सुध मिली चलीथिब
8: आई नो ना
3: आरबीआई कहे
2: करो सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट
9: भूयांश गुआमाल भद्रकु पद्मिनी राय राजेन्द्र राय समीर रंजन राय एसएमएस करिसिंदे शुणिया पई ओडिया कथाचित्र बंधु महंत्र ए गीतटी शुणाई दउछु।

0: ଶେଷ ହେଲା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଚୁଳ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

0: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for the national policy implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. Addressing BJP cadres in Bengaluru today, the Prime Minister underscored the need for a government that delivers, that provides good governance at speed, provides solutions and takes the country forward.
2: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की

0: all following four sets, the Indian trio held their nerve to edge past China 5-4 in the shoot-off. Veteran Deepika Kumari sealed India's first archery World Cup gold since 2021 with a crucial final arrow under pressure. Earlier, India had stunned record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-finals. And in IPL cricket, Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्वा सरमा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान

0: कायम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
0: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाटर முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியும் நே பி சபத் லி ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्र

0: यह पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबर।

0: के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे टिके परे।

आकाशवाणी कटक परवर्ती कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी रिले करी प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली रू।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कुछ फिल्मी तराने। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से।
1: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछ कार्यक्रम असरंती अपराह्न।

0: पुलिस
1: मिस सीमा
0: आज्ञा
1: एबे पुलिस स्टेशन आसंतु रुहंतु नहले घर को आसी जिबु हां
0: काई के किंतु मो
1: एकोटिया अन्य कोठरी को जानतु आपणन को पुओ आम कस्टडी रे अछि आ आपण डिजिटल अरेस्ट रे अछंती
0: डिजिटल अरेस्ट
1: 1 लाख दियंतु पहुंची जिबे
0: इत्ते टंका
1: अच्छा ठीक अछि गोटे लिंक पठै छी एबे प्रोसेसिंग पई 30,000 दियो नहले पुओ जेल जिबो
0: जेल त तुमे जिबो तुमरा चेहरा रेकॉर्ड हेई सरी छी
1: अरे
0: डिजिटल अरेस्ट भली किछि नाही ए सब फ्रॉड सेथी पई पैनिक होंतु नाही पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुथिबा साइबर अपराधी को फोन किबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु तांको कोनोसी टंका पठांतु नाही आ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु
2: हेलो मम्मा
0: हाय
3: आरबीआई कहे
0: सचेतन होंतु सतर्क रहंतु
4: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमजे अछि
5: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथी पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाज सीमेंट उपरे
6: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
7: महम्मदपुर बिलाहाट रो बापूजी पात्र अनुरोध करिसंती ओडिया एल्बम रो गुटे गीत सुनिया पे गाइछंती कुमार सानू एवं निवेदिता

0: हेलो
1: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहुची।
0: पुणी थारे
1: आपण डिजिटल अरेस्ट अछंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपण को पार्सल रे ड्रग्स मिलीची, लंबा फसीबे।
2: 10 लाख दियंतु, बंची जीवे।
0: सर एत्ते कोठो
2: गोटे लिंक पठाई छी, एबे प्रोसेसिंग पाई 2 लाख पठांतु। बाकी परे
0: सर 2 लाख
3: कोन हैला बापा
4: जियो, से माने कहउछंती मो पार्सल भितरु ड्रग्स मिलीची।
1: अरे
4: काटी देला,
3: पैनिक हुआनी बापा, डिजिटल अरेस्ट भले किछि नाही, ए सब फ्रॉड।
4: फ्रॉड
3: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुथिबा साइबर अपराधीक फोन किंबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु। तांकु कोनोसी टंका पठांतु नाही, आउ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु। जदि बुद्धिमता न देखैबे
4: त टंका हरैबे।
5: आरबीआई कहे सचेतन होवंतु, सतर्क रहंतु।
6: सेसोला कार्यक्रम चिरहरित आपने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणु समवेत कंठरे देशभक्त गीत रचना अक्षय कुमार महंती।

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୃତିର ପାହାଚ, ପ୍ରଯୋଜନା ସତ୍ୟସ୍ମିତା ବେହେରା, ଉପସ୍ଥାପନା ଇନା ପୁରୋହିତ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: पढ़ीनिया प्रतीक्षा
1: प्रीति रमेश भाई आमर सब् कार्यक्रम शुणी एवं सुंदर भाव निजर मतामत लिखिंट तेजस्विनी अप्पा एवं विश्वजित अप्पा उपस्थापन परिचालित होता चिठीरे चिठीरे मनर गीतर संगीतमय अगणा खूब भल लगी प्रीति अप्पा एवं तेजस्विनी अप्पा द्वारा उपस्थापित फोन इन संपर्क कथबार्तार सावलीनता खूब भल लगी अन्वेषारे सतरू आठ घंटार निद्रा और व्यायाम उपकारिता संपर्क दीप्ति रंजन भाई एवं अनन्य अप्पा उपस्थापना को भाई प्रशंसा बाढ़ी सृजनी से प्रचारित उत्कल गौरव मधुसूदन दास संबंध में सारगर्भ को आलोचना श्रोता कलम कविता एवं गल्प जाह्नवीर राखी ए सबको से प्रशंसा करने सहित शीतल अप्पा एवं शिवानी अप्पा धन्यवाद जनाई
0: रमेश भाई प्रथमत एत मन ध्यान दे आम समस्त कार्यक्रम गुडी शुणी आप मतामत रखी से अशेष अशेष धन्यवाद आपण विश्वजित अप्पा तेजस्विनी अप्पा अनन्या अप्पा दीप्ति रंजन भाई शीतल अप्पा।

0: समृद्धि आणंतु
1: इफ्को नैनो सारर चमत्कारिता रे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयारी थिला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमि अछि
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखि देली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
6: नमस्कार वर्तमान मुख्य संवाद सह मु लहरिका पटनायक। परिवेशगत दायित्व युव सशक्तिकरण एवं आंतरिक कल्याण माध्यमरे विकसित भारत निर्माण पई सामूहिक प्रयास पर गुरुत्व देले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेंगालुरुरे आर्ट अफ लिविंग संस्थार 45वां वार्षिक समारोह अंशग्रहण करी एहा कहिले। तमिलनाडुर मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण कले टीवीके मुख्य सी जोसेफ विजय तांक सहित शपथ ग्रहण कले 9 जन मंत्री। आसाम बीजेपी नवनिर्वाचित विधायक दल नेता भाव मनोनीत हेले डॉ हिमंत विश्व शर्मा। आसंताकालीठारु आरंभ हेबो पुरी श्रीमंदिर रत्नभंडारे थिबा रत्न अलंकारर गणति मणति। दुई दिन धरि एहि कार्य चालिबो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉ अरविंद पाढ़ी सूचना। महाप्रभुक बाहर चंदन यात्रा पई स्थगित थिला कार्य। श्रीक्षेत्र पुरी आज शेष होउछि महाप्रभुक बाहर चंदन यात्रा। अक्षय तृतीया ठारु आरंभ होइथिबा बाहर चंदन यात्रार शेष दिवस आज हेबो हळदी पाणी नीति। आसंताकाली ठारु अनुष्ठित हेबो महाप्रभुक भीतर चंदन यात्रा। मातृशक्तिर त्याग और बलिदान को स्मरण कर आज पालन कराउछि विश्व मातृत्व दिवस। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स मध्य मैच जारी। निर्धारित ओवर में 8 विकेट हराई एलएसजी 203 रन हासिल करथिबा बेले सीएसके सम्मुखरे 204 रन रो विजय लक्ष्य। आईपीएल द्वितीय मैच में रायपुर शहीद वीर नारायण सिंह आंतर्जातिक स्टेडियम परस्पर को भेटिबे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस। संध्या 7:30 आरंभ हेबो एही मैच। एवं दक्षिण आंडामान सागर एवं यार पार्श्वर्ती अंचल सृष्ट घूर्णीबलय लघुचाप परिणत होवार संभावना। घूर्णीबलय प्रभाव में वज्रपात सह वर्षा होने 17 जिला को पानीपाग केन्द्र सतर्क सूचना। मुख्य संवाद वर्तमान परवर्ती मुख्य संवाद शुणिपारे संध्या 7।
7: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
8: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
7: यहां होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
8: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
7: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज केवल खबर पूरी खबर।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदाई बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

0: पुलिस
1: मिस सीमा
0: आज्ञा
1: एबे पुलिस स्टेशन आसंतु रुहंतु नाले घर को आसी जिबु हां
0: काई के किंतु मु
1: एकोटिया अन्य कोठरी को जानतु आपणक पुओ आम कस्टडी रे अछि आ आपण डिजिटल अरेस्ट रे अछंती
0: डिजिटल अरेस्ट
1: 100,000 दियंतु पहुंची जिबे
0: इत्ते टंका
1: अच्छा ठीक अछि गोटे लिंक पठै छी एबे प्रोसेसिंग पई 30,000 दियो नहले पुओ जेल जिबो
0: जेल त तुमे जिबो तुमरा चेहरा रेकॉर्ड हेई सरी छी
1: अरे
0: डिजिटल अरेस्ट भली किछि नाही ए सब फ्रॉड सेथि पई पैनिक होंतु नाही पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुथिबा साइबर अपराधी को फोन किंबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु तांको कोनोसी टंका पठांतु नाही आ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु
2: हेलो मम्मा
0: हाय
3: आरबीआई कहे
0: सचेतन होंतु सतर्क रहंतु
4: परवर्ती गीत गाइचंती सोहम ओ सलोहमा कथाचित्र कथा देथिली मां को

0: समृद्धि आणंतु।
1: इफ्को नैनो सारर चमत्कारिता रे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: प्रचार करुछु आकाशवाणी रो कृषि शिक्षा कार्यक्रम।

0: हेलो
1: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहुची।
0: कोनी थारे
1: आपण डिजिटल अरेस्ट रे छंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपण को पार्सल रे ड्रग्स मिली छी, लंबा फसीबे।
2: 10 लाख दियंतु, बंची जीवे।
3: सर एते कोठो
2: कोटे लिंक पठाई छी, एबे प्रोसेसिंग पाई 2 लाख पठांतु। बाकी परे
3: सर 2 लाख
4: कोन हला बापा
3: जियो, से माने कहउछंती मो पार्सल भितरु ड्रग्स मिली छी।
1: अरे

0: सुन सुन सुन गाँ भाई भौनी माने केवाईसी अपडेट रो मेसेज को अनदेखा करंतु नाही, तुरंत केवाईसी अपडेट करंतु। जदि परिचय किंबा ठिकाना रे कोनोसी परिवर्तन नाही तेबे आपणंकर बैंक किंबा एटीएम किंबा बिजनेस करेस्पोंडेंट माने बीसिंग को पाखो को जानतु, किंबा बैंक रे पंजीकृत ईमेल किंबा मोबाइल नंबर किंबा मोबाइल बैंकिंग एप किंबा चिट्ठी माध्यम रे स्व घोषणा दियंतु। एवं जदि कोनोसी परिवर्तन अछि तेबे परिचय एवं ठिकाना रो सर्वशेष प्रमाण देखांतु, खाता को सक्रिय रखी करी बैंकिंग सेवार लाभ उठांतु। निजर केवाईसी अपडेट करिबा पाई निजर निकटस्थ ग्राम पंचायत रो कैंप किंबा बैंक शाखा को जानतु।
1: आरबीआई कहे
2: सचेतन हुवंतु सतर्क रुहंतु।
3: एथरे एथरे गैचंती शंकर महादेवन, चलचित्र तारे जमीन पर।

0: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: सत्य यही था क्योंकि सोमनाथ मंदिर पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था आस्था के चलते, और लाखों में हिंदू आते थे वहां पे शिव जी की पूजा करने के लिए, तो इसलिए सोमनाथ को उसने ध्वस्त किया। अब बात यहाँ पे आती है कि तो 17 बार मामूत ने आक्रमण किया भारत के ऊपर, अंतिम आक्रमण जो उसका था सोमनाथ के 1.5 साल बाद, अंतिम आक्रमण जब उसने किया वो इसलिए किया था क्योंकि ये जो भील कबीले के जितने लोग हैं जो राजस्थान सिंध और भावलपुर और वेस्ट पंजाब में जिन्होंने नाक में दम कर था और मामूत किसी तरह से अपना जान बचा के भागे थे, तो उनके ऊपर खुंदक के चलते ताकि उनको सबक सिखाया जाए उसके बाद, और फिर उसने भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया क्योंकि अफगानिस्तान में ही जिस तरह से तकरार लगातार हो रहा था और हिंदू शाही किंगडम के साथ आनंदपाल वंश के जो लोग थे जो आनंदपाल के जगह पे जिन लोगों ने साम्राज्य संभाला था, अफगानिस्तान तो चला गया था पर इस तरफ तो था चित्रल वगैरह और आपके लाहौर और ये सारे इलाके जो है वो तब भी हिंदू शाही किंगडम के कंट्रोल में ही था, और इस तरह की परिस्थिति वहां पे चलती रही अफगानिस्तान पे क्योंकि अफगानिस्तान को धर्म परिवर्तित 100% एक बार के आक्रमण पे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बने अलाउद्दीन ने भी सोमनाथ पे और अटैक किया, रानी पद्मावत की कहानी है, बहुत सारी चीजें हैं अलाउद्दीन का, तो सोमनाथ पे उसके बाद दूसरा अटैक हुआ, फिर तीसरे अटैक की जहां बात आती है तीसरे अटैक पे भी वो कहीं ना कहीं पे प्रथा के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो औरंगजेब ने सोमनाथ पे अटैक किया था। तो ये तो तीन बड़ा अटैक हुआ और उसके साथ साथ जब धीरे धीरे करके जब बुंदेलखंड और गुजरात में जब नवाब का साम्राज्य जब बना वहां पे जब मुसलमान सुल्तान बन गए गुजरात और बुंदेलखंड पे, तो ये छिटपुट अटैक लगातार होता ही रहा और इसीलिए कहा जाता है कि 18 बार सोमनाथ पे अटैक हुआ बड़े और छोटे अटैक मिला के।
1: सोमनाथ इतिहास होची संघर्ष और पुनरुत्थान इतिहास। 1025 ख्रीष्टाब्दरे महम्मद गजनी आक्रमण में मंदिर ध्वंस होता किन्तु प्रत्येक विनाश पर सोमनाथ पुनर्वार गढ़ी उठी अधिक शक्तिशाली और भव्य रूप से। ଏହି ଇତିହାସ ସୋମନାଥକୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଅବିନାଶୀ ପ୍ରତୀକରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି,
2: ଭାରତବାସୀ ଭାରତ କେ ଇସ ଅଦମ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା କି ଚେତନା କା ସ୍ମରଣ କରତେ ହୁଏ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋ କି ଭବିଷ୍ୟ ମେ ଭାରତ କେ କିସି ଭି ସଭ୍ୟତା କେ ବିକାଶ କୋ କହିଁ କୋଇ ଚୋଟ ନ ପହଞ୍ଚା ପାଏ। ଭାରତୀୟ ମେ ଅପନେ ଅତୀତ କେ ପ୍ରତି ଅପନେ ପୂର୍ବଜୋ କେ ପ୍ରତି ଉନକି ବାର ବାର ଉଠ ଭି ଗିରାଏ ଜାନେ କେ ବାଦ ଭି ଉଠ ଖଡେ ହୋନେ କି ଜୋ ଜିଜ୍ଞାସା ଥି ଉସସେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଲେ ସକେ।
1: ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1951 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପୁନଃନିର୍ମିତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପୁନଃସ୍ଥାପନା ଥିଲା।
3: गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश, उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे, इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया, बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई।
1: सोमनाथ अमृत पर्व आयोजित हुए विशेष पूजा, रुद्राभिषेक, धार्मिक आलोचना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भक्ति संगीत, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି।
3: ସୋମନାଥ ମହାଦେବ କେ ମନ୍ଦିର ପର ଫହରା ରହି ଧ୍ୱଜା ପୁରୀ ସୃଷ୍ଟି କା ଆହ୍ୱାନ କର ରହି ହୈ କି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କି ଶକ୍ତି କ୍ୟା ହୈ ଉସକା ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ୟା ହୈ ପ୍ରଭାସ ପାଟନ ତିର୍କି ଇସ ମିଟ୍ଟି କା କଣ କଣ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने

0: संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रभास पाटन का एक क्षेत्र भगवान शिव का अपना क्षेत्र तो है, इसकी पवित्रता भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। महाभारत काल में पांडवों ने भी इस तीर्थ में तपस्या की थी।
1: सोमनाथ आज केवल एक मंदिर नुहे, यह भारतर आत्मा, आस्थार शाश्वत प्रतीक, संघर्षर साहस एवं पुनर्जन्मर गौरव गाथा। सोमनाथ अमृत पर्व आमको स्मरण कराए जे संरचना ध्वंस होई पारे किंतु आस्था केबे नुहे।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक

परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबिल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

0: की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets, another fixture between Royal Challengers

0: रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स। लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड।
1: हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही, मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
1: Warangal ka PM Mitra Park desh mein textile kranti ko gati dega. PM Mitra Park mein lagne wali units ko केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा, खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले।
0: अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, Each PM Mitra Park could attract investments worth nearly 10,000 crore rupees while generating large-scale employment opportunities. Prime Minister Narendra Modi's visit to Karnataka and Telangana brought together several themes that have come to define India's current development narrative: infrastructure expansion, industrial growth, healthcare access, logistics, integration and cultural outreach. As these projects move from announcement to execution, their long-term impact will ultimately be measured by jobs created, services delivered, and regional growth achieved. The Prime Minister's visit to Karnataka and Telangana was characterized by a blend of economic planning and public engagement. These initiatives will work as long-term investments in connectivity, employment and manufacturing capacity and lead towards the goal of a Viksit Bharat by 2047. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR or our YouTube channel News on AIR Official. This was it for Spotlight today. Thank you so much for joining us.
2: Spotlight.

0: In the National Program of Features, you just heard a feature titled Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Bushida Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: ये आकाशवाणी है। रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास अकंपनीइंग हिम ऑन मृदंगम इज श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास तेलंगाना के एक अग्रणी कर्नाटक संगीतकार हैं। एक संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी मां श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर इमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व

0: नेतृत्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है.
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद फॉर रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा and was brought to you from the Delhi station of Akashvani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री

ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତସୀ କୁସୁମ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ। ଶିଳ୍ପୀ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ବନମାଳୀଙ୍କ ରଚନାରେ। ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଭାନୁମତୀ ସାହୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
3: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
2: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
3: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
2: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: अबे बाबू देखी होशियार गाड़ी धारे धारे मुंड को नुई नुई अंधारे चालू था नईली
1: गुरु बाजी लगे कहू आज पुलिस जरूर रेड कर
0: तू सेमती का अमंगलिया कथा मोटे कहना तो
1: मोटे अमंगलिया कथा नुहे गुरु ये बार मन कथा
0: तो मुहटा बड़ अलक्षण बाबू गत थर तू एमती का अलक्षण कथा कहलु जे पुलिस फायरिंग आम दल रु हमिता मरीगला
1: सी मला ना जे सब झंझट आमरी उपरे लदी दे गला रेल भांगी भांगा काम बेस जना थिला ना
0: अबे बकर बकर बंद करिबो ना देवी गोटे थापड़ सुन आमे आज एई बागिन नु माल लूट करिबा
2: ए गुरु ए बागिन ने कोन आसी कि हैं चावल ना गम
0: ओ कोन सला बिरयानी आसी पेटे गंथिबो
2: ओहो काहे कि बेकटर थट्टा करछु कहिलु हैं
1: ए गुरु गुरु गुरु ये पुलिस होइसल गुरु
0: हां
1: एई गोटा को 56 नंबर बागिन एथे तो खाली लबंग बस्ता आसी एणे घरणी तागिद करी कहिची गला बेले चावल नबा को अच्छा देखे को बागिन रे चावल आसी
3: जे गुरु एटा पर से पुरिया हबिलदार आकू कोन बा एते डर
0: तू जो थर बाजी लगे दोछ ना बाबू मो साहस उड़ी जाउची तो कथा केबे भूल हबनी मते लागुची आम विषय पुलिस पाखरे खबर पहुंची जाइची
2: सेई शंकर सेट खबर देथिबो आउ के दबो अन्न मान काम पछर गोड़ टाणी तार अभ्यास
0: चार से कथा से हाबिलदारा तेणी गला
1: गुरु एथर फटाफट बागिन भांगी काम आरंभ कर दियो
0: चटापट लगी जाओ अरे वाह अनेक दिन पर लवंग बागिनी आसी खाली गोटाए बस्तार तो आम बर्षे चली जा
2: बाबू ए बाबू बस्तार भारी भारी लगुच हाथ लगेलु
1: हाँ हाँ हाँ लगे लगे।

0: अबे बाबू
1: हाँ
0: ये बस्ती रे किए गोटे संगीत सम्राट रहिला ना कौन
1: नाही मो गुरु से जोता सिलाई कला वाला सांतु गाउ थिबो छाड़ से कथा भाग्य भलो काली रातिर आमे समस्त बंची गलु नहले भीषण झमला हि थांता
0: आमे सिना बंची गलु मास्टर रो कोन हितो के जाने बोधे खूब धुले हितो ना
1: मोटे नुए गुरु बाजी लगे कहउची
0: से बाजी से
1: खसी जाइथिबो ना
0: अरे पूणी से बाजी पैसा लागि आमे जेमति बागिन भांगी माल ने चंपट मारुचु ठीक सेमति तू से बेबिली को निजरा घरणी बने एठू चंपट मारनु हो से बस्ता खोल देखिया कोन चित्र अछि
1: हाउ आगो मु भगवान को स्मरण करूछि
0: गोली मारबे तो भगवान को सी यदि सुन था ना आमु को आज ये धंधा करियो काई पड़ था कहलु
2: बाबू गुरु मु आछि गलि
1: ए आछि गलु अब तो कमीज कोरे वाला
0: कोन देहरे मुंडरे भलो रकम खबणा हैछि तो
2: खबणा अरे मो धेरे टिपो लगेला वाला पुओ किए अच्छी कहलु आगुरु मु सबता व्यवस्था करी सारी थिली ना
0: व्यवस्था की व्यवस्था रे
2: पुलिस मो साथ रो कलर धरला मु आस्ते आस्ते आस्ते साथ रो बोतम खोल देली तोल को बसी पड़ी मारली चंपट पुलिस हाथ रे मो साथ आ मु आसे ते हाथ
0: भारी भला हला तू चासी गलु हमें खूब चिंता पड़ीथिलु
2: चिंता चिंता कोन पई गुरु हे हे वर्ष के डेढ़ वर्ष सजा ही थाते या तो आउ कौन टे अधिक आई था जेल पूरा बढ़िया डाली रुटी आराम रे मिली जाऊ ना कौन दे बाबू है
0: देख रुटी कथा कह मन पड़ गला मुझे कल टू खाइनी
1: खाइनु किरे कहीं खाइनु
0: अरे फुर्सत मिलला केते बेले
1: अरे बहाना कर चु कहीं गुरु कहलु सत कथा टा होची तो पाखरे पैसा नथला अरे तू पूरा इशारा कर दले बस्ती बोला एने खाइबा गदे दे थांते
0: कौन कहलु बे कौन कहलु मते तू हाथ पातिया कहचु गध कौटी कर आउ जदि दिने एक कथा मते कहचु ना तो दांत छाड़ देबी
1: रागुचु कहीं गुरु
0: रागिबी बुझुली सांग ए हाथ खाली दे जाने नबा कथा नुह
2: बुझुली गुरु खाइबा कथा पड़ी मते भीषण भोक लगे अच्छा ये बस्तार कौन अच्छी लवंग
0: पिटेलु पिटेलु से बस्ता देखा कौन अच्छी
2: पिटे हाँ
0: तो कथा तो बिल्कुल सत हैला बाबू खाली गोरु खिया कुंडा जा नहीं जा पूरा बस्ता टा सांतुक दे दे
2: सत कहू गुरु पूरा पूरी विरक्त है।

0: थरे मते तो निबिड़ बाहुबंधन रे बांधि रखु रो मो ओठरे तो ओठटा को थरक लागि मिसेई दे
1: ना
0: मते तो आपणार करनी गुरु
1: देखु छी तू पागली ही गलुनु
0: मो तो निज को आयत्र रखि परुनी गुरु
1: विषो को मोटे ओठरे लगाना सकुली चंचले चलिया
0: मोते तो निराश करनी गुरु आज जदि मो कथा तू राजी न होबु ना

गौरी गुरु गौरी गणेश मरे मंदिर भारी भजन नरे नल देख देख गुरु मु पाठ लिखिबा बंद करिनी आहुरी केते कण लेखि गलिनी तो नारे मुसिना मो मथरे सिंदूर पिंधि पारलिनी मते तो पागली कहि कंदेई कंदेई चली गलु तू पुरुष नथिलु तथापि तो मु तोते चाहुथिलि ना आउ सेथि पई तू मते छियो छियो कहि सिलेटरे गो मो भो एसबु लेखिबा को कहुथिलु ना हेले गुरु से सिलटटा ना भांगी गला रे आउ पाठशाला भी बंद हो गला ताहले तो कहो मो कानारे मो हाथर शंख भांगी कानारे मो हाथर शंख भांगी करे गुरु करे गणेश मोरे मंदिर भरे भजन नरे नड़

0: चंदन कुमार जेना कंठरे शुणुले आधुनिक गीत गीत रचना करिथिले मीनाक्षी देवी श्रोता बंधु कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र कार्यक्रम प्रचारित होनिश आठ दशमिक छ मीटर तथा नौश बस्तुरी किलोहर्ज जगे यह कार्यक्रम डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर आप माध्यम प्रसारित हो
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: ସମୃଦ୍ଧି ଆଣନ୍ତୁ।
1: ଇଫକୋ ନେନୋ ସାରର ଚମତ୍କାରିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ।
2: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो। ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
3: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।

0: क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अभुलगित कार्यक्रम रे सुनंतु केतुटी आधुनिक गीत प्रथमे कंठदान करिसंती बालकृष्ण दास शिल्पी कंठरी गुरुकृष्ण गोस्वामी रचना